धीरे मैंने खींचा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा।